生きてるようなやらないって歌を言ってるべ。ねえだはってよ、ねえだなとおぶれてもっとほらとらわらわよ。ねえぜへがほら。ねえぜへたらりやりもこれちこれじゃないと。なやってほらよなはずわったらおるよ。なおさんかいろよ。なえちゃれえちゃれしぜるよ。えじらちゃなってぜ。那土也就出土了，就出地上也也也高了，也在那一点，也那也，啊，用人那个那一点，每个他切成一点了，也用人可能一点也，好给手里一边拿苦了，干了可能一点，地了那一点了，这是一点呢，少了那个他切成，啊那个啊也，他因为。也卡点子耶，朋友们啦，是打下身来，到处吐滴噜，把什么吐滴噜，说打吐也卡也啊用啊也，也啦，把把那啊新年牙也啦，真的把可能性滴噜俩凶，也把新年牙天上打了呢，我吃了苦很啦，在那滴噜呢也啦，那开呢滴噜呢，也啦，干那干那个不怕啦。ये खेल के दाय अरोना आना माला तेत ऊ दियो सांग बेच बेचिं ये ने सां सांसा ठाकुर ना दियो के ना दिलुं ऐ केले ने हो जो ठुठुं ये हफ़ा ऐ जाना ने के आयर ये ने केले यो ये तीन साते केले सां यो ने अल्ले उन्हें सां अल्लाजे देते चित्ता जिला जहाँ ये वन सिंह तेरे ना अल्लाह मंत्री डेरा उच्चां लेने थाने अल्लाह तेरे इच्छा से ना अल नाल येरे ना से तेरे ने अल खनाते आ अंत में ना ना तेरे हाथ से ने हुसै कुआं जो तेरे तीन ना ना ना ते गले चिले जी सीना यो खुले तेरे सीना ते चन्ना जरा लेरो ताई लुआ ये हु पकड़ाने पाला चियाजे ये बता अभी ना तुम जो हाथ देश के लिए ना किसे लिया चियाजे चले थूं आधा वैसे कोई अलग ना तना ये बता आ वैसे कोई साल या स्पन ला या सी ता साल वैसे को हाँ साल दे वैसे को आ साल चीजे या यूं बता यू दिन माया का दरो वैसे को आ दिन हाँ यूं सी ना चीव चले को सी दिन दिन ले आधा ना सी Give a account of the Pichele Kuya Karatum. At Ura Trehuzon Adalaretta, let a titan. At Ura Tanetu, Huzon Nagutela. Take an ant era, Alberta TC. And then is an otitan Karatura, Atalata. At Ura Zon Utela. Could you go the quaint eye? Sombe, conquer it in a Tesco cone, conda, take on a holding lame. Is a ta, Chequa, no, you are near, but near the tapa, near the ta, no, the do, sign the room. Is a tapa, as a she's so torn as a very cool saloon. Good side, or I want to take on my ass, did him. I don't like the man, yea, Tavella. A young son at a young catch at that old Tanana would dizzy. Good job, the son's a cheer and never tie ye beard like a little ye day. John should say, John, near John, you are a bit cunning lad, you are a trade nag and either cool. We the band ye ye are a doom. Tanan lily, you're a bacon la in la. Kwan had hot snow, you rabbit. This cunning done is shown. This cunning, Miss Cunning, Dighty, I see. Good year is indeed there. See, the town is a very cool snow, you're night day there. He is with all I lad, and I see one like three houses all and now. I see it last, so he had them. And all a cunning, good liner, good north, sir, a joke. A king yaw jan jan don't look for the coin la yer quantum yer
tuomme ketään, tuomme skene, nattiin.